पानी परियां मुस्कुराए, देखो बगोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

0: दिल में संभालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है।
1: Duk kali-kali nak pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
2: Oloh, duk tanya pula. Dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. HK ni awak ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah, pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini duk terlondeh ni?
1: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
2: Haru weh ke ini eh. Dar,

0: पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा